यार से दिन ची संगलां जी देना तारी के लिए चंदन जी तो जो यंग तिचुल मांबुश के में करते ना जिंतरंग आती लमा परोडो मारा कंसा गमोनी के लंबी साशंतों मंडी सांडी रेस को नोगर दर्क न्यामुं दी ठोनी पाचना बिगुंज को जो यल तेरंग के लिए चंदगर सोंडू पातं सोंडिंगां करपा सेरों टाशी तं ताकलपा शिगु चचुप ताकलपा अंतर सेरों तं सोंड मरिंचिंग यिं कब जीमी लेसन आचो यंग चंदुं थरटाशी दिलक्ष